आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: करो ये गाना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों तड़पाते हो बाबू?
1: मैं तुम्हें क्या तड़पाऊंगा, मैं तो खुद तड़प रहा हूं।
0: तुम यहां से चले क्यों नहीं जाते?
1: चला जाऊं कहां? चला जाऊं कैसे? चला जाऊं? ये तो वो वादी है जहां पर हम दोनों की मौत हुई थी। ये तो वो धरती है जहां पिछले जन्म के दो प्रेमी दफन हैं। ये तो वो जगह है जहां पर मरने से पहले हम दोनों ने जन्म जन्म तक साथ निभाने की कसमें खाई थी। तुम ही बताओ, इस धरती को छोड़कर कहां चले जाऊं, कैसे चला जाऊं?
0: तुम्हारी बातें मेरी समझ में कुछ भी नहीं आती है। आखिर तुम चाहते क्या हो बाबू?
1: मैं तुम्हें वो कहानी याद दिलाना चाहता हूं जो चंदनगढ़ के राजमहल से शुरू हुई लेकिन पूरी होने से पहले खत्म करती गई।
0: ये झूठ है, मेरा उस कहानी से क्या संबंध है?
1: संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। अगर तुम ना होती तो वो कहानी कभी शुरू ना होती। मेरा विश्वास करो, मुझ पर यकीन करो रत्ना, आज भी चंदनगढ़ के राजमहल में तुम्हारी तस्वीर लगी है।
0: तस्वीर?
1: हाँ।
0: मेरी तस्वीर?
1: हाँ।
0: नहीं नहीं बाबू, तुमसे जरूर कोई भूल हुई है, वो तस्वीर किसी और की होगी।
1: रत्ना, चंदनगढ़ यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं, तुम चलकर अपनी आंखों से देख लो और चलकर खुद ही फैसला कर लो। आज देखो देखो, ये चंदनगढ़ का राजमहल है, इसे देख के कुछ याद आया? जानती हो पिछले जन्म में तुम यहाँ की राजनर्तकी थी और मैं यहाँ का राज गायक। इसी शाही बाग में हम मिला करते थे जहां से हमारी मोहब्बत शुरू हुई थी। कुछ याद आया? कुछ भी नहीं?
0: नहीं।
1: आओ आओ मेरे साथ।

0: ये वही राज दरबार है। वही दीवारें हैं, वही सतून है, इन पर की गई नक्काशी। बरसों बीत गए, कुछ भी तो नहीं बदला। इसे गौर से देखो, पहचाने की कोशिश करो। ये वही राज दरबार है, कुछ याद आया? आओ आओ मेरे साथ।
1: ये दीवाने खास है, जहां पर नृत्य और संगीत की महफिलें जमा करती थी। याद करो, ये वही जगह है जहां पहली बार तुम्हारा हमारा सामना हुआ था। यहां पर महाराज बैठा करते थे और चारों तरफ दरबारी। उस तरफ गुरुजी का सिंहासन था और उस तरफ उस्ताद बंदे अली खां, और तुम गौरी के साथ मेरे बिल्कुल सामने बैठी थी। और जैसे महाराज का इशारा हुआ, मेरी उंगलियां सितार पर मचल उठी और तुम्हारे पांव बिजली की तरह थिरकने लगे।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 8 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो?
1: हंस नहीं रहे दोस्त, रो रहे हैं तुम्हारी अकल पे और हम सबकी बेखूदी पर। एक दीवाने ने ख्वाब देखा जंगल में और उसकी तस्दीक के लिए हम सब दीवाने तुम्हारे दरबार में पहुंच गए।
0: ये दीवानगी नहीं हकीकत है, मैंने अपनी आंखों से उन दो इंसानों को सांप बनते हुए देखा है।
2: विजय पहले तो तुम्हारी सिर्फ दिमाग पे शक था, अब मालूम होता है कि तुम्हारी आंखें भी जा रही हैं।
3: हम ये कैसे मान सकते हैं यार कि एक सांप जब चाहे इंसान का रूप धारण कर ले और जब जी में आए फिर से सांप बन जाए।
4: मैं तो कहता हूँ ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है और कुछ नहीं।
1: मुझे तो सोचकर भी हंसी आती है यार।
0: चंद साल पहले तुम्हारे जैसे लोग चांद पर जाने वालों पर ऐसे ही ऐसा करते थे।
5: ओ फिलोसोफर साहब, आप अपनी फिलॉसफी से सच को झूठ में नहीं बदल सकते।
0: अरे भाई, ये इच्छाधारी सांप सदियों से है और जो बात सदियों से सच है वो आज भी सच है, समझे?

0: गोली किसने चलाई?
1: मैंने।
0: क्यों?
1: अगर मैं गोली नहीं चलाता तो नाग उस लड़की को डस लेता।
0: वो लड़की नहीं है बेवकूफ, वो नागिन है, और जिस नाग पर तुमने गोली चलाई है उसे मैं इंसान के रूप में देख चुका हूँ, उससे बातें कर चुका हूँ।
2: लेकिन अब क्या करूँ, पिस्तौल से निकली हुई गोली वापस तो नहीं आ सकती?
0: जिस तरह पिस्तौल की गोली वापस नहीं आ सकती, इसी तरह नागिन का बदला कभी टल नहीं सकता। कहते हैं मरने वाले नाग की आंख में मारने वाले की तस्वीर रह जाती है, और नागिन उस वक्त तक चैन से नहीं बैठती जब तक वो खून का बदला न चुका ले।
3: तो अब क्या किया जाए?
0: किरण के बचने की सिर्फ एक ही सूरत है, हमें फौरन उस नाग को ढूंढ के जमीन में दबा देना चाहिए ताकि वो नागिन अपने नाग की आंख में इसकी तस्वीर न देख सके।
3: लेट्स सर्च।
0: हाँ चलो।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

से ठोकर तेरा पैर फिसल जाए, है कितनी नाजुक तू है, संभल ओए मोच न आ जाए। मारना ऐसे ठोकर तेरा पैर फिसल जाए, है कितनी नाजुक तू है, संभल ओए मोच न आ

भी छल्लो ले जा छल्ला निशानी, मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी, मेरी मोहब्बत।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 1 PM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

0: नजर न लगा दीजिए।
1: अजी हम तो आपकी नजर के मारे हुए हैं।
0: तो फिर हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं?

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: हो चकाचक फिर लो पान चबा।
1: आहा।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: आएगो आएगो आएगो।
1: ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया। जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया है। क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया।
0: आएगो आएगो आएगो
1: ये क्या हो गया।
2: आएगो आएगो आएगो ये क्या हो गया।
1: आएगो आएगो आएगो ये क्या हो गया।
2: आएगो आएगो आएगो ये क्या हो गया।
1: आएगो आएगो आएगो ये क्या हो गया।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं बताऊंगी तुझे दिल की बात बता दूं। नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं।

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार मिक्स मस्ती शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार थीम चॉइस में सुनिए दिए गए थीम शब्द पर आधारित गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बचाते रहो दिल से।

हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं लेकर आज का स्टार मिक्स मस्ती का मस्ती वाला शो। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है क्यों, है ना। एंजॉय कीजिए इस गाने को, फिर आते हैं आप सबके वेलकम पर।

0: वेलकम बैक। बिल्कुल मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। वैसे बहुत से दोस्त जुड़े हुए हैं, सभी का वेलकम करते हैं। सबसे पहले जुड़ने वाले हमेशा की तरह हमारे हमारे सरफराज यानी सरफ भाई साउथ अफ्रीका से जुड़े हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। आपका भी मंगेश देशमुख जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं मंगेश देशमुख जी। और मैं बता दूं कि जितने भी दोस्त हैं वो प्लीज मुझे यानी मैसेज में अगर रिक्वेस्ट भेजेंगे तो मुझे दिक्कत होती है क्योंकि मैं नोट नहीं कर पाया हूं अभी तक। तो इसलिए जितने भी दोस्त ने मैसेज किया होगा प्लीज मुझे सॉन्ग रिक्वेस्ट में भेजेंगे तो कोशिश करेंगे, तो मेरे लिए अच्छा भी रहेगा, उनके लिए भी अच्छा रहेगा अगर मुझे वहां पे दिखेगा कि हाँ कौन कौन से गाने सॉन्ग रिक्वेस्ट में आए हुए हैं। और भाई हमारे ये मुबारक हुसैन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं मुबारक हुसैन जी। बहुत बहुत भाई मुबारक हो, आप जुड़ गए हैं। और साथ ही साथ हमारे MD जलील जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और हुकुम चंद जांगर जी जुड़ चुके हैं इन कोटा राजस्थान से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और सुनीता गोप जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। साथ ही साथ ये काजल झक्का जी मतलब यानी काजल झा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और काजल झक्का जी आप भी कोशिश कीजिए वहाँ से सॉन्ग रिक्वेस्ट से गाने भेजने की, चूँकि यहाँ पे मैं भूल जाऊँगा तो प्लीज़ मुझे याद दिलाइएगा क्योंकि मैं भूलता बहुत हूँ, भुलक्का नंबर वन हूँ ना। मिसाल अंगा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और राधा कृष्ण गोप जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी राधा कृष्ण गोप जी। और ईश्वरलाल मेहर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। साथ ही साथ ये विष्णु चंद्र जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम कर रहे हैं आपका भी। साथ ही साथ अशोक देशमुख जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं आपका। और प्रकाश जी जुड़ चुके हैं तो बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी प्रकाश जी। साथ ही साथ ये रवि जी जुड़ चुके हैं, RK रवि जी, बहुत बहुत वेलकम कर रहे हैं आपका भी। और रणवीर सिंह जी जुड़ चुके हैं, ये मुरादाबाद UP से जेठालाल, अच्छा रणवीर सिंह जेठालाल जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और राय पर्वत जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और मीना इब्राहिम जी UA से जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। और बबीता जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम है। इस्माइल खान जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है इस्माइल खान जी। और सरवजीत शेट्टी जी फाजिलका पंजाब से, आपका भी वेलकम है। और गोविंदा खंडाटे जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। साथ ही साथ अभिषेक तिवारी जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। और गजानंद सुरकार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। साथ ही साथ हमारे प्रमोद कुमार जी आगरा वाले जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। जाकिर खान जी वो जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। सर्वेश भगत जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। बेचारे क्या कहते हैं पहले इनकी सुनते हैं।
1: आरजे अमन सर जी सुख संध्या, नमस्कार नमस्ते जी, आपका ओपनिंग सॉन्ग बहुत अच्छा लगा, हिना फिल्म का अच्छा लगा गाना सुन के, धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद, थैंक यू।
0: और यहाँ पे निशांत राय बोले जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। अजय भगत जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। और ये MD गुलबाज जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम है। तो प्रोग्राम का ओके चलिए, तो यानी कि प्रोग्राम का आगाज करते हैं। और सबसे पहला यानी कि यहाँ पे मैं लेता हूँ आज यानी कि कायनात जी की पसंद, और कायनात जी सुनना चाहती हैं चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। बिल्कुल चली, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

और दूसरी बात आप सबके लिए गुड न्यूज है कि रेडियो हॉटस्टार के एप्लीकेशन को अपडेट कीजिए, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन को अपडेट करेंगे, अगर आप यानी कि लकी विनर बनते हैं, तो मैं आज आपको कॉल लगाऊंगा ऐप के माध्यम से ही।

और आज के दिन यानी बुधवार के दिन आप चाहें तो मुझे यानी नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और नंबर पे कॉल करके भी गाने सुन सकते हैं। नंबर है 9135841232 9135841232 पे आप मुझे इन नंबर पे कॉल करेंगे, डायरेक्टली नंबर पे, व्हाट्सएप कॉल नहीं करेंगे प्लीज। अगर किसी को जो वो मतलब यानी कि ऐसे दोस्त जो मुझे इन मैसेज नहीं कर सकते हैं वो मुझे अपने कॉल करके गाने सुन सकते हैं, बिल्कुल लाइव समय उनकी डिमांड ली जाएगी।

0: बिल्कुल चुरा के दिल मेरा गोरिया चली है। और यहाँ पे चैट बॉक्स में मुझे दिख रही हैं यानी प्रियंका जी और पूजा भास्कर जी, गुलबाज जी और इट्स कुमार साहब, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। राहुल पासी जी आपका भी वेलकम करते हैं। ये लोग यानी कि चैट में धमाल मचाए हुए हैं। अच्छा, और सुभाष तिवारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और मंगेश दसमुख जी लिखते हैं कि ये कैनाथ जी के पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई है, धन्यवाद देते हैं उनको। और संतोष गौंड जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए, नमस्कार अमृतसर जी। और बिल्कुल खास गाना आप ही के लिए बना है कि मैं देर करता नहीं देर। जी सही कहा आपने, वो गाना स्पेशली मेरे लिए बना हुआ है। बीटू कुमार लिखते हैं कि नमस्कार नमस्कार, वेलकम है आपका भी। और अंजल कुमार जी जुड़ चुके हैं बहुत दिन बाद, बहुत बहुत वेलकम करते हैं अंजल कुमार जी आपका भी। और अमीना जी लिखते हैं वाह क्या गाना है, मुझे ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ ही साथ निशांत राय बोले लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है, बहुत ही प्यारा गाना है। देव राय जी लिखते हैं कि हेलो अमन जी, लगे हाथ ये लिख कि मेरा भी वेलकम लीजिए। अच्छा, एक ही बार इतना सारा मैसेज, ओ माय गॉड 45 मैसेज एक बार में? नहीं सर जी, इट इज नॉट फेयर, क्योंकि बहुत से दोस्त लाइन में लगे होंगे। ये फिर
1: नमस्ते सर, मैं अनिल कश्यप सिवान बिहार से जुड़ गया हूँ और आपके शो में अभी से लेकर रात के 10:30 बजे तक जुड़ा रहूँगा। बहुत बहुत अच्छा अच्छा गाना चल रहा है, धन्यवाद।
0: वेलकम, बिल्कुल मैं 10:30 बजे तक ही रहने वाला हूँ, उससे ज़्यादा तो नहीं रहने वाला हूँ। गजानंद जी लिखते हैं कि ये कैनाथ जी के पसंद चुरा के दिल मेरा मुझे बहुत ही पसंद आया, धन्यवाद देते हैं। और प्रियंका जी क्या कहती हैं सुनते हैं।
2: हेलो, गुड इवनिंग अमन जी, मैं ये सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ जो कि काफ़ी अच्छा है। अभी तो लगे हैं।

0: थैंक यू, ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा है और मुझे बहुत पसंद है।
1: अच्छा जी, और यहाँ पे यानी कि प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड है, धन्यवाद देते हैं। और निशांत रायपुर लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग। इसी बात पे अगला जो डिमांड है अनिल कश्यप जी का है, सुनना चाहते हैं यानी कि प्यार में दिल तो सब देते हैं, ये जान देने वाले हैं। अच्छा सच में का जी,

फीचर्स है जी बिल्कुल। न्यू अपडेट में ये भी फीचर्स है कि अगर आप यानी कि मैसेज करने के लिए ऐड पर जाते हैं तो ऐड में आपका रेडियो रुकेगा नहीं, रेडियो यानी प्ले होते रहेगा। वहाँ पे वॉल्यूम का जो बटन होगा उस पर क्लिक कीजिएगा तो यानी जो मतलब यानी कि एडवर्टीजमेंट की आवाज़ आती है वो बंद हो जाएगी, लेकिन रेडियो बिल्कुल आपका चालू होता रहेगा। और भी बहुत सारे वो उसमें जो यानी कि प्रॉब्लम थी उसको शट आउट किया गया। एक और अपडेट आएगा उसमें वो रिकॉर्डिंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व

बिल्कुल, यानी प्यार में तो दिल तो सब देते हैं और जान तुम्हें हम देंगे। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन डिमांड है अनिल कश्यप जी की। और निशांत राय बोले जी यहाँ पे लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना है। और निशांत राय बोले जी आप मुझे प्लीज वहाँ पे व्हाट्सएप पे कॉल ना करें बिल्कुल। और आरती जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और गजानंद जी लिखते हैं कि अनिल कश्यप जी की पसंद बेहतरीन लाजवाब लगी है, उनको धन्यवाद देते हैं। नंदलाल यादव जी जुड़ चुके हैं गाजीपुर यूपी से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। इसी बात का अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ शाहिद अंसारी जी का, बहुत ही प्यारा गाना है।

0: संगम।
1: ओ जानम बहुत, और तो फिलहाल इंजॉय कीजिए हमारे शाहिद अंसारी जी का गाना, जब दिल धड़कता है महसूस होती है। और गाने और फिल्म का नाम है सुनो ससुर जी। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी।

0: इट्स कुमार जी।
1: कुमार जी
2: हेलो, नमस्कार।
0: हेलो, नमस्ते। और कैसे
1: नमस्ते।
0: हैं?
1: और कैसे हैं?
2: बढ़िया है सर, आप कैसे हैं?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरी आवाज
1: मैं
0: मुझे
1: बहुत
0: भी
1: अच्छा
0: आ
1: हूँ।
0: रही
1: मैं
2: ओहो
0: है। एक्चुअली अगर स्पीकर पर होंगे तो प्लीज थोड़ा सा इस वॉल्यूम को यानी कम कर दीजिएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आवाज अच्छी आ रही है बिल्कुल।
2: ओके सर, ओके।
0: हाँ, अब बताइए। एक्चुअली ये ऐसा यानी कि फर्स्ट टाइम हो रहा है कि रेडियो के एप्लीकेशन पे ही आपको मतलब यहाँ से ये कॉल किया जा रहा है, ये पहले बताइए, ये एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये तो अभी हम जाने आपके द्वारा, क्योंकि
0: अच्छा।
2: अभी सुबह अपडेट किए थे ना,
0: हाँ,
2: तो पता नहीं था इसके बारे में।
0: अच्छा, इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन अब पता हो गया ना कि मैं यहाँ से आपके रेडियो सेट पे ही आपको यानी कि कॉल रिसीव हो जाएगा, आपसे बातें हो जाएंगी और आपके पसंद के मैं गाने भी प्ले कर सकता हूँ। तो बताइए आज क्या सुनना पसंद करेंगे
2: सर? हम वो चैट बॉक्स में बताए थे, सुनो ससुर जी
0: अब जी
2: छोड़ो,
0: छोड़ो ये गाना सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल, तो सुनवा दूँ। और कुछ
2: जी,
0: कहना चाहते हैं
2: जी
0: आप?
2: बिल्कुल। और आपके प्लेटफॉर्म के बारे में बोलना चाहेंगे, बहुत अच्छा है। जब से मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे आया हूँ तब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये हर एक से जुदा है एक प्रकार से।
0: ओके, थैंक यू सो मच। हम आपका दिल से वेलकम करते हैं और सच में आप लोग धमाल मचा रही है वहाँ पे इन चैट बॉक्स में, मुझे अच्छा लगता है। आप लोग मैं मैसेज को वहाँ पे रीड करता हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं इतना बिजी रहता हूँ कि वहाँ पे मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाता हूँ आप सबकी बातों को लेकर।
2: जी बिल्कुल, समझते हैं आपकी बात को।
0: तो फिलहाल गाना सुनवाते हैं, इंजॉय कीजिए, है ना?
2: थैंक यू सर।
0: ओके, वेलकम। थैंक यू।

0: बिल्कुल दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, और मीना जी ने बहुत ही अच्छा गाना लगा, खूबसूरत गाना लगा है। धन्यवाद देते हैं आपको भी, और मीरा जी लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हम भी जुड़ गए हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपको भी। और जाकिर खान जी लिखते हैं कि मोहब्बत की महक ना पूछिए, इस महक की वजह ना पूछिए, हर सांस में तुम समय रहते हो और कहाँ बसे हो तुम, जगह ना पूछिए, हाँ बिल्कुल मत पूछिए भाई। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि जब दिल धड़कता है महसूस होती है, ऑसम चॉइस शाहिद जी की, थैंक यू सो मच। और काजल सरकार जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, मजा रहते हैं सुनके। साथ ही साथ दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि अमन जी आपके प्रोग्राम में आने के बाद ही प्रोग्राम में जाना भी है, थैंक यू सो मच आपका भी। और निशांत राय बोले लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है जी। और अनिल कश्यप जी क्या कहते हैं,
1: प्यार में दिल तो सब देते हैं, जान तुझे दे देंगे हम, ओ जानम ओ जानम। और इसके बाद जब दिल धड़कता है महसूस होता है, तुम दिल में कहीं छुप कर बैठी हो मेरी जानम। तो ये गाना बहुत ही लाजवाब लगा, और मेरा वाला भी, और जितने लोगों ने फीडबैक दिया उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद गाना बजाने के लिए, थैंक यू।
0: और बहुत बहुत सभी दोस्तों का थैंक यू सो मच हमारे ग्रुप में धमाल मचाने के लिए, यानी चैट बॉक्स में। ओके, आप भी चैट बॉक्स में धमाल मचा सकते हैं। और हमारे मंगेश देशमुख जी लिखते हैं कि अमर जी सभी गाने ब्यूटीफुल चल रहे हैं, मजा आ रहा है सुन के। और राधा कृष्ण को लिखते हैं बहुत ही शानदार डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं। और गजानंद जी लिखते हैं कि ये सुनो ससुर जी अब छोड़ो वाला गाना भी मुझे बहुत पसंद आया है, और शाहिद जी की भी पसंद बहुत ही प्यारी थी। राहुल पासी जी लिखते हैं कि अमन सर जी दूल्हे राजा वाला गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। और अजय भगत जी लिखते हैं कि सुपर डिमांड जी बिल्कुल। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन ये नगमा है। और यहाँ आमना खान जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, लिखते हैं कि इट्स कुमार जी आज तो बाजी मार गए हैं, और आपकी मेहनत रंग लाई है, सुपर एंड यानी क्लियर वॉइस है बिल्कुल। और अच्छा ओके आई एम सॉरी, खैर कोई बात नहीं है। और ओके और यहाँ पे हमारे इशाक हुसैन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, वालेकुम असलम भाईजान। निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, और राय पर्वत जी लिखते हैं कि ये वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा बिल्कुल। आमना खान जी ये आइडिया आप मुझे आप ही ने दिया था, मतलब इसके हकदार बिल्कुल आप हैं, क्योंकि आप ही ने ये कहा था कि ये फीचर्स हमारे ऐप में होना चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ पे जाते हैं वहाँ जाते हैं यानी व्हाट्सएप में जाते हैं, तो ये दिमाग मेरे, मतलब ये दिमाग देने वाली आप ही थी। ओके हमें, और मैंने इस पर यानी मेहनत की, और बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था। मतलब मैं बता दूँ कि करीब जब मैं स्टार्टिंग करा इसको यानी बनाने के लिए, तो करीब यानी कि मतलब करीब सुबह के 3:30 बज गए थे यानी बजाते इस ऐप को यानी बनाते। फिर उसके बाद से मैं सुबह 9 बजे उठ के फिर बनाना शुरू किया, तो करीब यानी कि शाम के 4 बज गए। और उस दिन इतवार का दिन था, उस दिन मेरी छुट्टी थी, और उस दिन एप्लीकेशन पर ही मैं काम किया था, तब जाके ये मेहनत आई थी रंग। और इसका देने वाला यानी मेन ये आइडिया देने वाली का मतलब मेन दिमाग आपका था, थैंक यू सो मच इसके लिए, इसका हकदार आप हैं, मैं आपको स्पेशल कॉल जरूर करूंगा इसके लिए। और नंदलाल जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बीच में मैं आपको अभी थोड़ी देर में कॉल कर लूँगा, जब आप मुझे मैसेज कीजिएगा कि हाँ आप मुझे कॉल कीजिए तो मैं कॉल कर लूँगा आपको। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि शानदार डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और ये हमारे सरफराज जी यानी बुलंदशहर वाले जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। अगला जो डिमांड है वो राय पर्वत जी का प्ले करने वाला हूँ, और ये गाना इनका बहुत ही प्यारा है, इन पा लिया है प्यार तरह अब नहीं खोना, वो मेरी सोना।

बिल्कुल, मैं सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि फिलहाल अप्लीकेशन को अपडेट जरूर कर लें, क्योंकि अपडेट करेंगे तभी मैं आपको कॉल लगा पाऊंगा, नहीं तो नहीं लगा पाऊंगा। निशान साहब बोले चीज कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है, और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ये प्यार ये वाला गाना मुझे बहुत ही पसंद है, और राहुल पासी से लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद देते हैं।

0: होना, ओ मेरी सोना तुम मेरी होना।
1: बहुत लाजवाब गीत सुनकर
2: वेलकम जी आपका। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि अमन जी आप अब यानी कहाँ से रिक्वेस्ट जी ऐप रिक्वेस्ट जहाँ से आप गाना भेजे हुए हैं बिल्कुल आपका गाना मेरे पास पहुँच चुका है, टेंशन मत लीजिएगा। काजल झका जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही प्यारा लग रहा है। और राय पवन लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी गाना प्ले करने के लिए। और प्रियंका

0: थैंक यू, बहुत ही अच्छा सॉन्ग था ये।
1: और यानी प्रियंका जी, मुझे आपकी आवाज को सुनकर लग रहा है कि आप हिमेश रेशमिया की यानी छोटी बहन है कि नहीं? ऐसा ही बिल्कुल हिमेश रेशमिया जैसे आपकी आवाज लग रही है मुझे। और गजानन जी लिखते हैं कि ये राय पर्वत जी के पसंद मुझे बहुत ही पसंद है, ये धन्यवाद देते हैं उनको। साथ ही साथ बाबूलाल अंजना लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि अमर जी मैं भी जुड़ गई हूँ, बहुत बहुत आपका वेलकम है आपका। और लिखते हैं गाना भी बहुत अच्छा चल रहा है। धर्मेंद्र मोहन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और ओके, साथ ही साथ कभी कभी नेटवर्क इशू करता है तो दिक्कत होती है। मंगेश दसमुख जी लिखते हैं कि अमन जी नहीं पता है मुझे, क्योंकि ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, ये पता है।
2: नमस्ते अमन सर जी, सारे दोस्त के गाने सुपरहिट चल रहे हैं और आज के प्रोग्राम बहुत मस्त रहा। दोनों बिटिया रानी सही अपना प्रोग्राम करी और जानकारी भी अच्छा दिया, पुराने बिसरे हुए ताज़ा हो गया, जानकारी मिली बहुत बढ़िया। तो दिल से धन्यवाद दोनों बिटिया रानी को।
1: ओके जी, वेलकम है आपका भी। और फिलहाल अगला जो, अच्छा रवि महाराज जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। इसी बात पर अगला जो हम आमना खान जी को कॉल लगाते हैं, पहले इनसे बातें करते हैं, फिर चूंकि इस यानी कि कॉलिंग फीचर्स के हकदार सिर्फ आमना खान जी हैं।

0: शायद अपडेट है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। वहाँ पे कॉल जा रहा है कि नहीं जा रहा है अब ये। हाँ, रिसीव हो गया। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम जी, आवाज आ रही है?
0: बिल्कुल आवाज आ रही है जी, अच्छी आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल स्पष्ट एंड क्लियर आवाज आ रही है
1: जी। बहुत बहुत मुबारक आपको।
0: थैंक यू सो मच। और आपको मेरी आवाज आ रही है?
1: बहुत क्लियर, एकदम साफ।
0: ओके, अच्छी बात है। हाँ, ये होना चाहिए था, यानी कॉलिंग में हमें लगा ऐप अपडेट नहीं है, क्योंकि जब तक ऐप अपडेट नहीं होगा और लॉगिन नहीं होगा तब तक कॉल नहीं जाने वाला है।
1: अच्छा अच्छा, नहीं कर लिया मैंने पहली फुर्सत में, जब आया अपडेट मैंने कर लिया।
0: चलिए, अच्छी बात है आपने कर लिया, और इसके हकदार तो सबसे पहले आप हैं, क्योंकि ये आपने ही दिए थे राय कि मुझे ऐसा फीचर चाहिए कि आप मुझे ऐप के माध्यम से कॉल कीजिए, और मैंने इस पर यानी काम किया और ये कामयाबी मुझे मिली। बहुत बहुत आपको भी बधाई हो।
1: ये तो आपका बड़कपन है, उमूमन लोग नहीं करते ऐसा, लेकिन आपने मुझे क्रेडिट दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेहनत आपकी, अब बैलेंस भी आपका।
0: ओ थैंक यू सो मच, ऐसी कोई बात नहीं। फिलहाल बताइए आज आप क्या सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि आवाज बहुत अच्छी जा रही होगी बिल्कुल हमारे दोस्तों को, है कि अभी फीडबैक आएगा सभी दोस्तों का?
1: बहुत क्लियर एकदम, बहुत जैसे सेम बात करते ना कॉल पे, व्हाट्सएप पे भी नहीं, कॉल पे बात करते ना सेम वैसी,
0: बिल्कुल अच्छी आवाज मिलेगी, जबरदस्त। हाँ, तो अब बताइए। अच्छा, एक चीज और है, ये रेडियो एप्लीकेशन में ही आपको ये कॉल रिसीव होगा, और जैसे आपसे मेरी इन बात खत्म होगी फिर आपका रेडियो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये चीज है।
1: हाँ, वो तो व्हाट्सएप पे भी होता है।
0: हाँ, मतलब यहाँ पर भी है ये चीज सारा, इसमें फीचर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको।
1: अच्छा, जैसे कट होगा जैसे स्टार्ट होगा। हाँ, नहीं, बहुत बेहतरीन काम, ये ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम रेडियो में, ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब वो बोझा नहीं थी, वो ऐप नहीं निकले अभी आजकल कि आप मतलब आराम से बात कर सकते हो, वो सारा कुछ एक ही उसमें आपने दे दिया, वो तो एकदम सुपर काम हो गए।
0: ओके, चलिए अच्छी बात है। तो आज आप बताइए स्पेशल कॉल में क्या सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये आपके ऊपर क्रेडिट कर दिया गया है, बताइए।
1: हाँ, शुक्रिया शुक्रिया, मैंने जो सेंड किया ना वही आप प्ले कर दीजिए, क्योंकि वक्त कम है और लोग
0: तो,
1: भी
0: अभी तो आपका देखा भी नहीं है आपने कौन सा गाना भेजा है, अब तो मुझे चेक करना
1: पड़ेगा। वो चलती चलती मूवी का प्रेम नगरिया की डगरिया, चलो वही वाला।
0: अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ अभी इस गाने को, नगरिया की डगरिया, चलो। हाँ, मुझे मिल गया गाना, मैं जरूर प्ले करूंगा इस गाने को। तो चलिए आपके गाने को सुनते हैं, एंजॉय कीजिए, सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार अमन के साथ, जो आपको दीवाना बना दे।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे और एफडीआईयू बंसाली जी लिखते हैं बहुत शानदार, थैंक यू सो मच आपका भी। और निशान राय वो लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है और राय पवन जी लिखते हैं कि वेरी वेरी वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। साथ ही साथ हमारे आमना खान जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच, आवाज बिल्कुल इन क्लियर आ रही है। और ओके जी, और यानी कि प्रमोद कुमार लिखते हैं कि आमना खान जी की पसंद बहुत ही अच्छी लगी है, लाजवाब लगी है। और मीना जी लिखते हैं वाओ क्या बात है, बहुत अच्छी ये रिक्वेस्ट है। और बाबूलाल अंजान लिखते हैं कि आमना जी का डिमांड मुझे बहुत प्यारा लगा है। और गजानंद जी लिखते हैं कि आमना जी की पसंद बहुत ही शानदार, ओके जी। और शिल्पा बेन लिखते हैं कि आमना जी की पसंद बहुत ही बढ़िया है, ओके जी। और
1: दुनिया के स्वरूप सो है निराले, बैठे हो तुम कैसे मन को संभाले, प्रेम नगरिया की तुम भी डगरिया चलो, हम तो चले संग तुम भी गुजरिया चलो।
2: बहुत ही प्यारा सॉन्ग और फरमाइश करने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी सर थैंक यू।
0: वेलकम जी। और अब प्रियंका जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ओके, और यहाँ पे राहुल पासी जी लिखते हैं कि अमन सर जी ये वाला चलते चलते मुझे गाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद देते हैं। निशान राय पवन लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। और और यहाँ कामना जी लिखते हैं कि बहुत बहुत सभी शुक्रिया, मतलब सभी दोस्तों का शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। और इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे अजय भगत जी का है, ये सुनना चाहते हैं आपसे पहले ना आपके बाद, ना कोई आया ना कोई आएगा।

0: बिल्कुल आपसे पहले ना आपके बाद ना कोई आया है ना कोई आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा ये फिर
1: आरजे अमन सर जी, अजय भगत जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं यार, सभी भाई को भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी, और राधा कृष्ण को देखते हैं कि इस शानदार डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ गजानंद कहते हैं कि अजय भगत जी की पसंद मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी है, और अजय भगत जी कहते हैं अमन जी थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, और प्रमोद कुमार कहते हैं कि अजय भगत जी की पसंद लाजवाब और बेहतरीन है, और राहुल पासी जी कहते हैं कि आपके पहले ना आपके बाद ना कोई आया है, बहुत ही बढ़िया गाना सुनने को मिला है, और मीना जी लिखते हैं कि वाह क्या बहुत ही प्यारा गाना है, और सरोजी शेट्टी जी लिखते हैं कि सभी गाने सुपर हिट चल रहे हैं, राय पर्वत जी लिखते हैं कि ये त्यौहार आंखियन में कुछ ऐसा नसब आ कि देखते देखते दिल यानी तौर पर फिदा हो गई, अब यानी कि प्यार भी तू और जिंदगी भी तू। अच्छा सच में का इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे वो सरफराज खान जी का है, वादों से नहीं यादों से नहीं मैं

जी बिल्कुल। और मीना जी लिखते हैं कि वाह क्या बात है, क्या गाना है, दिल खुश हो रहा है इस गाने को सुनकर। और अच्छा ओके। और निशांत गोयल जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना चल रहा है जी बिल्कुल। और जफर रंगरेज जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, लिखते हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। और ओके। और यहाँ पे अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग चल रहा है। इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ कौन सा जाकर देखता हूँ, ये जो गाना है यानी कि प्रियंका जी का, ये सुनना चाहती हैं मुझे तुमसे।

0: वेलकम एक और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं। गजानंद जी लिखते हैं ये प्रियंका जी का पसंद, राम लखन का बहुत अच्छा लग रहा है, और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि मुझे तुमसे कितने के लिए गाना मुझे बहुत पसंद आ रहा है। धन्यवाद इन प्रियंका जी को। और जुड़ चुके हैं प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि ये तेरा नाम लिया मुझे गाना बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद देते हैं। और राय पर्वत जी लिखते हैं कि यहाँ तो तेरे साथ ही मेरी हर खुशी पूरी लगती है, और तू मिले तो जिंदगी खुशबू लगती है वरना अधूरी लगती है, और सच कहूँ अब इन किसी से नहीं आदत तेरी मोहब्बत से हो गई है। अच्छा ऐसा भी है। और देवराज तोमर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। लिखते हैं कि अमन जी आप कैसे हैं? जी यानी मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सुनीता गोप जी लिखते हैं कि इस गाने का डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आशीर्वाद बहन लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ प्रियंका जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: मुझे तुमसे है कितने गिले, हाँ हाँ हाँ, तुम कितने दिन बाद मिले, क्यों क्यों क्यों, मुझे तुमसे है कितने गिले, तुम इतने दिन बाद मिले,
0: अच्छा।
1: बोलो इतने

0: हो तेरा नाम लिया तुझे याद किया, तुझे याद किया तेरा नाम लिया। थैंक यू सो मच।
1: ओके जी, और यहाँ पे राहुल पासी जी लिखते हैं कि मुझे तुमसे कितने के लिए गाना मुझे बहुत ही पसंद आया है। एमडी फैज आलम जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम सलाम लिखते हैं, सुपर सॉन्ग चल रहा है। और ये क्या कहते हैं, इनकी सुन।
2: मुझे तुमसे है कितने गिले, तुम कितने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया, तेरा नाम लिया हो।
1: ओह माय गॉड, हाँ अगला अपडेट में ये ठीक हो जाएगा। आप लोग का गलती नहीं है, गलती मेरी है, मैंने ध्यान नहीं दिया था इसीलिए। फिलहाल अगला जो डिमांड है हमारे सर्वेश भगत जी, अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी और हाँ ये यानी कि तीन दोस्तों का है। ओके, तो तीन दोस्तों के मैं गाने को प्ले कर रहा हूँ। सबसे पहले अशोक देशमुख जी का ऑडियो सुनते हैं।
3: नमस्कार अमन सर।
1: नमस्कार,
3: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
1: वेलकम।
3: आज का थीम है स्टार मस्ती, तो मुझे एक मस्ती भरा गीत सुनना है। फिल्म का नाम है राम बलराम और गाने का बोल है, सच्चा कहो चाहे झूठा कहो, हमसे भूल हो गई हमका माफ़ी दे दो। ये गीत सबसे पहले आपको और आपकी सुंदरता की मूरत को और जितने भी हॉटस्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
4: जय अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। आज हमारा फरमाइश का फिल्म है राम बली राम और गाने का बोले हमसे भूल हो गई हमको माफी दे दो। हॉट स्टार जो सबको दीवाना बनाते, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत जिला वैशाली बिहार से बोले, हमारा परिवार सतीश भगत हेमंत भगत पर्ष किशोर भगत आनंद शेखर सुन कुमार सूरज कुमार मनोज जायसवाल अशोक देशमुख भाई जी आत्माराम पाटिल जी सैयद दिनू जी आर जे अमन सर जी सुंदरता किरण जी आर जे आकांक्षा जी आर जे एम एस परमार जी आर जे वंशिका जी और सभी आर जे और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर इसमें शामिल है, सभी को सुना दीजिएगा। अमन सर जी
1: सुनवा दी।

बिल्कुल हमसे भूल हो गई, हम क्या माफी दे दो। और बहुत सारे फीडबैक है, मैं शामिल करता हूँ सबसे पहले तो ये फीडबैक हमारे दीपक कुमार गायकवाड़ जी का, थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब चल रहा है, जल्दी ओपन मैसेज नहीं हो पा रहा है।

0: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, पर रेडियो हॉट स्टार पर गाना बजे तो जरूर नाचना।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है दीपक कुमार गायकवाड़ जी, अच्छा बोला आपने। और यहाँ पे सुरेश भगत जी क्या कहते हैं?
2: जय मान सर जी, धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। हमारा तीन भाई का फरमाइश अपने प्रोग्राम में जगह दे दिए, अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी और हम, तीनों भाई का फरमाइश आप अपने प्रोग्राम में चला दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर,
1: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे निशांत राय बोल लीजिए, वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। और अनिल कश्यप जी,
3: आरजे अमन सर जी, एक रिक्वेस्ट है कि आपका जो थीम म्यूजिक बजता है एडवर्टाइजमेंट या फिर जो भी हो, अब मुझे इतना ज्ञान नहीं है, तो वो जो गानों के बीच में बजता है तो उसका रिंगटोन कैसे मिलेगा, मुझे सेट करना है।
1: अच्छा अच्छा, ओके, आपको मैं भेज दूंगा, नो प्रॉब्लम, टेंशन मत लीजिए। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि ये दोस्तों की दिमाग बहुत अच्छी लगी है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि धन्यवाद अमन सर जी, हमारे फरमाइश गीत सुनाने के लिए बहुत शुक्रिया। और पूजा भास्कर जी लिखते हैं कि उसने पूछा कि मैं इश्क हूँ या ज़रूरत, मैंने गले लगा के कहा कि तुम जिंदगी हो। आहा, क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा आपने। और गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय अशोक देशमुख जी, सुरेश भगत जी, सभी के पसंद बहुत अच्छे लगे, धन्यवाद देते हैं आपको। मंगेश देशमुख जी लिखते हैं कि सुपर डुपर हिट शानदार पसंद चल रहा है। और ओके जी, और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ये तीनों दोस्तों की डिमांड औसम लगी है। और राधा कृष्ण को देखते हैं, बहुत ही शानदार डिमांड है, सभी दोस्तों का थैंक यू सो मच। मीना जी लिखते हैं, वाओ क्या बात है, क्या पसंद है। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि हमसे भूल हो गई, हमको माफ़ी दे दो। गजानंद जी लिखते हैं कि दीपक कुमार गायकवाड़ जी का फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद अगला जो डिमांड है आरती तिवारी जी का है, आरती तिवारी जी सुनना चाहती हैं ये गुस्सा कैसे उतरेगा। अब ये तो यही जानते

है, धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे बाबूलाल जी जैसे आशी तिवारी जी का गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और कृष्ण पाल लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग चल रहा है। गजानंद जी लिखते हैं कि आरती तिवारी जी के पसंद ये गुस्सा कैसे उतरेगा, बहुत ही प्यारा लगा है। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ओके मैं देखता हूँ। फिलहाल अगला जो डिमांड है हमारे गजानंद सलोकार जी का है, ये सुनना चाहते हैं, मतलब उनके पूरे इन ग्रुप की ये डिमांड है, दिल ना दिया, ये सुनना चाहते हैं। सुना दिया, एंजॉय कीजिए गजानंद जी के ग्रुप ये डिमांड।

दिल ना दिया। वैसे गजानन जी से रमन जी को प्यार भरा नमस्कार है। गाना प्ले करके बहुत बहुत धन्यवाद है। और मंगेश जसमो जी लिखते हैं ये ग्रुप डिमांड बहुत ही शानदार लगी है। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये कृष्ण मूर्ति का गाना शानदार लगा है, धन्यवाद देते हैं। और आशीष राय जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही सुपर डिमांड है, धन्यवाद देते हैं। और

0: बिल्कुल पहुंच गया कलकत्ता भी, और बाबूलाल जी से ये ऋतु जी का डिमांड बहुत ही सुपर हिट लगा है, और रवि मोहन जी क्या कहते हैं,
1: दिल ना लिया दिल ना लिया तो बोलो ना बोलो क्या किया, दिल ना लिया दिल ना दिया तो बोलो ना बोलो क्या किया, आके दुनिया

0: बहुत ही सुपर लाजवाब सॉन्ग हमारे परम मित्र गजानंद सालोकार जी का, और गाने में याद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आ गया मंसर जी इस सॉन्ग में।
1: ओके जी, वेलकम है आपका भी। और निकला जी जुड़ चुके हैं डेनमार्क से, वेलकम करते हैं आपका भी। और गजानंद जी लिखते हैं कि लगन नजरिया का धक्का बुलंद कर कलकत्ता पहुंच गए, मजा आ गया गाना सुनकर, एकदम दिल खुश हो गया है। मंगेश देशमुख जी लिखते हैं कि ब्यूटीफुल सॉन्ग है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ये शानदार और सुपर डिमांड है। और साथ ही साथ यहाँ पे राहुल पासी जी लिखते हैं कि लगन नजरिया का धक्का कि हम कलकत्ता पहुंच गए, ये फीडबैक सुन लेते हैं।
2: जय अमन सर जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, सभी भाई अपने अपने गाने में शामिल किए, सभी भाई को भी धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं।
1: ओके,
2: थैंक यू सर।
1: वेलकम जी। इसी बात पे आर के रवि जी का गाना प्ले करते हैं, ये लाल घाघरा कोई सुनना चाहते हैं, पता नहीं कौन सा गाना है, अब तो सुनने के बाद ही समझ में आएगा, लाल घाघरा बाबा लाल घाघरा।

0: और लाल घगरा सच में कमाल के लिए बनू। और यहाँ पे निशांत राय वो लिखते हैं गाना बहुत अच्छा लग रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि भोजपुरी गाना सुनने का मजा ही कुछ और है। अच्छा तो जल्दी सुनने को मिलेगा आपको हर मतलब शनिवार दोपहर या 1:30 बजे से, आप जरूर सुनिए आरजे सोनी जी के साथ। और इस यानी कि शनिवार से स्टार्ट हो रहा है भोजपुरी यानी खेतड़ का, जरूर सुने बिल्कुल। और फिलहाल यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि ये दोस्त रवि मुखर्जी का गुनगुनाना मुझे अच्छा लगता है। निकला जी लिखते हैं कि वेरी गुड इवनिंग आर्जे अमन जी, गुड इवनिंग। और यहाँ पे नंदलाल जी लिखते हैं कि लाल घाघरा वाला गाना तो बहुत ही अच्छा लगा था, एकदम मजा आ गया सुन के एकदम। दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि सारे रेडियो स्टेशन एक तरफ और रेडियो हॉटस्टार एक तरफ है, डंका बजा रहे चारों तरफ, रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। धन्यवाद देते हैं आपको। रवि मुखर्जी जी लिखते हैं कि लाल घाघरा लाजवाब सॉन्ग है, सुनने को मिल गया, मजा आ गया सुन के। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि आर के रवि जी का डिमांड भी मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। राहुल पासी जी लिखते हैं कि आर के रवि जी की भी मुझे पसंद बहुत अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं। और यानी प्रियंका जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे सिर के ऊपर से गुजर गया। अच्छा हो सकता है कि समझ में नहीं आया होगा मुझे ये फिर।
1: वैसे घाघरे की जरूरत नहीं है, रेडियो हॉट स्टार तो ऐसे ही पूरा हिलाया हुआ है और पूरा जिला और पूरा मतलब देश हिल रहा है। जो जो लोग सुन रहे हैं वो लोग हिल रहे हैं, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, थैंक यू। और ये गाना भी बहुत ही जगकास लगा है, मस्त और बिंदास लगा है, थैंक यू।
0: वेलकम जी आपका भी। और इसी बात पर यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं आर के रवि जी की पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी है। अगला डिमांड नंदलाल यादव जी का, ये सुनते हैं ये क्या सुनवा रहे हैं।

0: और एक दो गाने के बाद मैं फिर हिंदी गाने की तरफ आऊंगा। आप लोग टेंशन ना लीजिए, सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं मेरे पास, आप प्रमोद जी का लाजवाब डिमांड चल रहा है और सर्वेश भगत जी का।
1: आरजे अमन सर जी, नंदलाल यादव जी अपने गाने में शामिल किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: आपका भी और गजन जी के बचन मुझे पसंद आई है और बाबूलाल जी से नंद जी का डिमांड शानदार लगा। इसी बात अगला जो बिट्टू कुमार जी का सुनते हैं, आरा हिले छपरा हिले बलिया हिले ना पता ना का हिले, सुनवाते हैं।

0: बिल्कुल ऐसे ही यानी कि कमल लटकाते रहिए और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे राधा के गोपी देखते हैं बहुत ही सदा डिमांड के लिए। थैंक यू सो मच नंदलाल जी से गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिटू जी देते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। अमन जी अक्षर पाल जी जो चुके हैं बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी और फिर सुनते हैं।
1: हेलो अमन सर, मैं मिसार अंगद बीड महाराष्ट्र से आपके लाइव कार्यक्रम से शुरू से ही जुड़ गया हूँ अमन सर जी, लेकिन फीडबैक देने के लिए कुछ देर हो गई है क्योंकि मेरे दोस्तों बहुत से दोस्तों रेडियो सम्मेलन के लिए जा चुके हैं, जैसे हमारे महाराष्ट्र में संभाजीनगर में है और छत्तीसगढ़ में भिलाई में जो हमारे दोस्त हीरामन खिराड़े मोहन न्यावरे संतोष काले जी गए हैं, तो मैं उनसे ही बातचीत कर रहा था अमन सर जी। और आज मैंने भी मेरा गाना भेज दिया है लेकिन अभी तक तो आपने मेरा गाना नहीं सुनवाया अमन सर जी। मैं रहा देख रहा हूँ कि मेरा गाना कब आप सुनवाओगे।
0: बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, जरूर सिलेक्ट कर दूंगा मैं आपका गाना। और प्रियंका जी से की ये गाना मेरा फिर से ऊपर से निकल रहा है और काजल झका जी से गाना भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काजल जी से की होलत के जब कमरिया गीला हिलेला और राहुल पासी जी से की नाइस चल रहा है। इसी बात पर जो डिमांड है हमारे गोविंदा खंडादे जी का, गोविंदा खंडादे जी एंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास फीडबैक आए हुए हैं अनिल कश्यप जी का, क्या कहते हैं सुनते पहले।
1: सिवान बिहिली गोपालगंज बिहिली।
0: अच्छा,
1: सिवान बिहिली गोपालगंज बिहिली, साथे साथे कप्तानगंज बिहिली।
0: अच्छा,
1: और का बताई हम रेडियो हॉट स्टार हिली और साथे पूरा बिहार हिली।
0: धन्यवाद आपका। और यहाँ पे भाई जी क्या कहते हैं।
2: कमर भी लचक गया, सजिया भी सज गया, लॉलीपॉप है कि नहीं अमन भाईजा?
0: नहीं,
2: लॉलीपॉप होगा तो वो भी चलाइएगा। एमडी फैज आलम हैदराबाद।
0: ना वो तो आप ही को भेजना पड़ेगा, यानी कि लॉलीपॉप ला के लो। और पीपू राय जी देते हैं कि हम भी जुड़ गए, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और निशान राय बोले जी देते हैं कि वही नाइट चल रहा है। और गजानंद जी देखते हैं गोविंदा खन्ना जी की पसंद बहुत अच्छी लगी है। और इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे विशाल अंगा जी का सुन लेते हैं। और तब आते हैं फिर हिंदी की तरफ आते हैं बिल्कुल। और यहाँ से हिंदी गाना फिर स्टार्ट हो रहा है। अभी हिंदी गाना लगातार खुले होंगे, फिर भोजपुरी में बीच में जैसे टाइम मिलेगा मुझे तो मैं मतलब भोजपुरी में आऊँगा, लेकिन फिलहाल हिंदी गाने।
3: हेलो अमन सर, मैं मिसा अंगद बीड महाराष्ट्र से आपके लाइव कार्यक्रम में एक गीत भेज रहा हूँ। अमन सर जी, आज बॉलीवुड मिक्स मस्ती में मुझे तेरे मेरे सपने इस फिल्म का गाना सुनने का है। और गाने के बोल है आँख मारे तो लड़की आँख मारे। अमन सर जी ये गाना मैं सुनना चाहता हूँ। और अमन सर जी ये गाना सबसे पहले मैं आपको डेडिकेट करूँगा, फिर आपकी सुंदरता की मूरत इन दोनों के लिए भी गाना पेश डिलीट करूँगा, फिर हमारे आदरणीय गजानन सालोकार जी, सर्वेज भगत जी, हीरामन खिराड़े जी, मोहन न्यावरे जी, सुरेश भिसे पाटिल जी, फुले भक्त संजीव बौद्ध जी, आनंद कुलकर्णी जी, अमोल कामले जी और आदरणीय बबीता जी, इन सभी के लिए गाना सुनने का है अमन सर जी, तो गाना सुनवा दो। और हमारे सभी दोस्त आज कल और परसों के दिन में जो कार्यक्रम है हमारे महाराष्ट्र में संभाजीनगर में और छत्तीसगढ़ में भिलाई में जो रेडियो श्रोता सम्मेलन को हमारे बहुत सारे दोस्त गए हैं, तो इन सभी दोस्तों के लिए ये गाना मैं डेडिकेट करूंगा। धन्यवाद।

वेलकम बैक। और फीडबैक मेरे पास आए हैं यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब डिमांड चल रहा है। और पपीकुराय जी लिखते हैं कि नंबर वन सॉन्ग आंख मारे वो लड़की आंख मारे। और प्रियंका जी क्या कहते हैं सुनते हैं।

0: बजाए, बीच सड़क में करके इशारे बुलाए, वो मुझको सताए, वो लड़का आँख मारे आँख मारे, वो लड़का आँख मारे। थैंक यू,
1: वेलकम जी आपका। और राहुल पासी जी से कि ये वाली पसंद मुझे बहुत पसंद है, ये धन्यवाद देते हैं आपका भी। और
2: आरजे अमासा जी, मिसाल अंगद जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं।
1: थैंक यू सो मच आपका भी। और अनिल कश्यप जी क्या कहते हैं,
3: मैं इम्पोर्टेंट आशिक हूँ बट यू माई लव क्या जाने, लंदन से अमेरिका तक मेरे कितने दीवाने, आई कम इंडिया फॉर यू डार्लिंग, तू माने या ना माने, ओ डी टी डियर कम इन नियर, नो फी फी फी फी फी फी फी फी फियर। बहुत ही शानदार गाना आँख मारे, और जिनका फरमाइश था उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके जी, और मंगेश दसमुख जी लिखते हैं, आरजे अमन जी सभी श्रोताओं की डिमांड बहुत ही अच्छी अच्छी लग रही है। निशांत रायपुर लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। और अशीर पाई बहन लिखते हैं कि आँख मारे लड़की आँख मारे बहुत अच्छा लगे। इसी बात में अभिषेक तिवारी जी का गाना सुनते हैं, ये सुनना चाहते हैं ये गाना।

और ये सवाल आ रहा है कि इस गाने की आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है। कोई बात नहीं, तो अब गाना तो यहाँ पे बिल्कुल सही बज रहा है, लेकिन अब वहाँ पे नहीं जा रहे, तो कोई बात नहीं, मैं अगला गाना प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगला गाना मेरे पास कौन सा है?

0: बिल्कुल, तो बिट्टू कुमार जी आपका गाना प्ले हो चुका है, अब क्या प्रॉब्लम है ये पहले मुझे बताइएगा जरूर आपका। और यहाँ पे दीपक कुमार गायकवाड़ जी क्या कहते हैं?
1: आँख मारे ओ लड़का, आँख मारे, पर अब आँख नहीं मारता है, वो मोबाइल से मिस कॉल मारता है या व्हाट्सएप पे मैसेज करता है। धन्यवाद।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे यानी कि प्रियंका जी लिखते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों भाई, अब क्या प्रॉब्लम है, हिंदी गाना भी नहीं समझ में आ रहा है? विष्णु चंद्र जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। और हाँ, इस गाने में आवाज़ नहीं आ रही थी, मेरे पास कंप्लेंट आ चुका है बहुत सारा। बाबूलाल जी लेते हैं कि दोस्त जाकिर खान जी की डिमांड बहुत अच्छी लगी है। और ये फिर गए,
2: हेलो अमन सर, मैं फिर एक बार मिसाल अंगद, और आपने मेरा गाना सुनवाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमन सर जी। और मेरे गाने को सभी दोस्तों ने इतना पसंद किया, तो मैं सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद दूंगा अमन सर जी। आज का कार्यक्रम बहुत शानदार हुआ है, और अभी तक जितने भी गाने सुनवाए बहुत मस्ती भरे गाने थे, सभी गाने मुझे बहुत अच्छे लगे अमन सर जी। और आज दोपहर 4:15 बजे का जो आरजे वंशिका जी का या आकांक्षा जी का जो कार्यक्रम था, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे गाने सभी दोस्तों को सुनवाए। मैंने वो भी कार्यक्रम पूरा सुना अमन सर जी, और आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है। और मैंने ऐप अपडेट कर दिया है अमन सर जी, तो बिल्कुल सही और क्लियर चल रहा है।
0: धन्यवाद।

ठेंगा दिखाएगा। हाँ अच्छा लगेगा ना। राहुल पासी जी लिखते हैं कि शानदार गाना चल रहा है जी, बिल्कुल। और गजन अंजलि लिखते हैं कि जागर जी की पसंद बेहतरीन लगी है, लाजवाब लगी है। और अनिल ईश्वर क्या नाम है, ईश्वर अलमिहार जी जो लिखते हैं कि मैं बीजी था। अच्छा, और राधा कृष्ण को भी गाना सुनकर दिल खुश हो गया है। अन्य जो डिमांड है राहुल पासी जी का है, सुनना चाहते हैं दलाल फिल्म का ये शानदार गाना, इंजॉय कीजिए।

अभी तो इतना जल्दी समय हो गया, यानी कि 10:45 9:45 हो गया है और 35 सेकंड। फिलहाल यहाँ पर राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद गाने के लिए, और गजानंद जी लिखते हैं कि राहुल पासी जी के पसंद मुझे बहुत ही पसंद है, धन्यवाद देते हैं उनको।

0: तंबुलकर जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत वेलकम है, लिखते हैं कि हेलो सर, मैं तो स्टार्टिंग से ही आपका शो सुन रही हूँ और थोड़ा बिजी थी इसलिए फीडबैक नहीं दे पा रही हूँ। और आज लिखे सुबह रेडियो हॉटस्टार की ऐप को अपडेट कर दिया है मैंने भी, और एक नंबर है ऐप को, और आपका स्लीप टाइमर भी बहुत इन काम आता है, हमें नींद यानी लग जाती है और मोबाइल पर यानी गाना भी यानी बंद हो जाता है बिल्कुल यानी कि टाइम होते ही। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और बाबूलाल जी लिखते हैं राहुल पासी जी की दीवान मुझे बहुत अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं आपको भी। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल नो प्रॉब्लम। और जागर खान जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा डिमांड को प्ले करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का भी। और ईश्वरलाल जी लिखते हैं कि ये फिल्म मैंने सिनेमा में देखी थी और जब मैं 15 साल का था। अच्छा ये बात है, मुझे तो याद नहीं, मैंने देखी नहीं है। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि मैंने गाने को खूब इंजॉय किया। अच्छा सच में कहा। और राहुल यहाँ पे यानी कि पीकू राय जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम, लिखते हैं कि मस्त गाना चल रहा है जी। और मीना जी लिखते हैं वाह वाह क्या लाजवाब गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये गाना सुनकर, मजा आ गया है। और राहुल पासी जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। एमडी जली जी लिखते हैं मैं भी सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रही है। और सर्वजीत जी लिखते हैं कार्यक्रम शानदार चल रहा है, प्रियंका जी क्या कहती है।
1: मैं तो चलूंगी ऐसे मटक कर, नीयत खराब जो डाले कबूतर, लूंगी हजार झटके अटरिया पे सोना कबूतर रे, अरे चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे सोना कबूतर रे, गुटर गुटर
0: अच्छा
1: गुटर गुटर।
0: क्या बात है। और यहाँ पे निशान राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। और जी और फिलहाल अगला जो डिमांड है वो है यानी पीकू राय जी का, ये भी सुनना चाहते हैं कबूतरी बोले कबूतर से। अच्छा

0: बिल्कुल। और यहाँ पे गजानन जी लिखते हैं यानी कि प्रियंका जी का गुनगुनाना मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है जी। बिल्कुल, आज मैंने उनको नाम दिया हिमेश सिन्हा की बहन। ओके, राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये कबूतरी बोले कबूतर से गाना अच्छा लगा मुझे। और ये जलील जी क्या कहते हैं,
1: कबूतरी बोले कबूतर से मुझे देख ले छत के ऊपर से। गाना बहुत अच्छा है सर जी, मजा आ रहा है सुनने में। थैंक यू,
0: वेलकम जी। और फिकुर राय लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा डिमांड प्ले करने के लिए। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि ये फिकुर राय जी की पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी है। और निकला जी लिखते हैं कि हम भी सुन रहे हैं जी। बिल्कुल सुनते रहिए। और ओके, देखता हूँ मैं। बिल्कुल, अगला जो डिमांड है बाबूलाल अंजाना जी का है। बाबूलाल अंजाना जी सुनना चाहते हैं प्यार में दिल दे दिया।

0: बिल्कुल, मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं और यहाँ पे प्रियंका जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना चल रहा है, मजा आ रहा है सुन के। और यहाँ पे ये क्या कहते हैं,
1: अमन जी कबूतरों के बारे में एक खास बात बताता हूँ। आपके पास अगर कबूतर पला हुआ है और आप उसको अगर 20 किलोमीटर दूर भी ले जाते हो तो वो अपने जीपीएस सिस्टम से अपने घर वापस आ जाता है। अच्छा। वो कहीं भटकता नहीं है।
0: ओह माय गॉड, अच्छा ऐसा है। ओके जी, आओ यहाँ पे।

0: अब तो आंख मारोगे तो भाभी नहीं देखेगी, कोई दूसरी लड़की नहीं देखेगी, लेकिन गाना बहुत शानदार चलाया आपने, धन्यवाद।
1: लेकिन ये बताइए बबीता जी, हमें लग रहा है कि आप दूसरे मोबाइल से सुन रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आपकी आवाज़ के साथ साथ मतलब रेडियो की भी आवाज़ आ रही है, क्योंकि अगर एप्लीकेशन से रिकॉर्ड करती तो उसमें रेडियो की आवाज़ तो बिल्कुल नहीं आती। अशोक भाई लिखते हैं कि दीवानी मैं दीवानी गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ये प्यार में दिल दे दिया मुझे गाना अच्छा लगा है, और राधा कृष्ण को भी लिखते हैं कि बहुत ही खुश और डिमांड है जी बिल्कुल, और ईश्वरलाल जी लिखते हैं झक्का सुन, और बाबूलाल जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये गाना प्ले करने के लिए। दोस्तों का भी धन्यवाद।

0: दीवानी, थैंक यू।
1: वेलकम जी। और ईश्वरलाल जी लिखते हैं कि अमनसा जी आपकी आवाज़ इन कम आ रही है। सच में कहा आवाज़ कम आ रही है। ओके, अब शायद ठीक जाए। मेरे ख्याल से थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा दिया मैंने, और बताइएगा अब ठीक आवाज़ जा रही है कि नहीं। और रवि महाराज जी लिखते हैं कि ये प्यार में दिल दे दिया गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और फिलहाल अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ। और मैं किस किस गाने को मैं प्ले करूं मैं समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल मैं प्ले कर रहा हूं यहाँ पे सुनीता गोप जी के पसंद, ऐसा चेहरा ना ही बनवले हुई केहू के भगवान हो।

0: बिल्कुल, और मेरे पास फीडबैक भी बहुत सारे आए हुए हैं। और यहाँ पर रवि मर्जी लिखते हैं कि ये प्यार में दिल दे दिया वाला गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और बबीता जी क्या कहती है?
1: नमस्ते मन सर जी, मैं ऊपर हूँ ना, तो सूरज के मोबाइल में गाना चल रहा था, हम दोनों मोबाइल में सुनते रहते हैं। अच्छा, तो उसकी जैसे नेट अगर हमारे में कम हो जाता है तो उसका मोबाइल में सुनते रहते हैं, तो मेरे कान लगा के सुन रहा था मैं क्या बोल रही हूँ, तो इसीलिए ना आवाज़ जा रहा था। ऐसे सारे दोस्त के गाने आज बहुत शानदार चले हैं। अब नीचे जा रही हूँ मैं रोटी खाने, अगर मेरा गाना हो तो चला देना, धन्यवाद।
0: ओके, आज तो मैं मतलब कोशिश करूँगा लेकिन प्रॉमिस नहीं करूँगा। जलिए जी लिखते हैं कि नहीं पता है मुझे भी। और पीकू राय जी लिखते हैं कि ये सुनीता गोप जी के पसंद मुझे बहुत ही पसंद है, धन्यवाद देते हैं उनको। और मीना कुमारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और ओके, और यहाँ पे राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यार डिमांड के लिए थैंक यू सो मच आपका। और सुनीता गोप जी लिखते हैं कि अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे बाबूलाल जी लिखते हैं कि ईश्वरलाल जी की डिमांड भी मुझे बहुत अच्छी लगी है। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही प्यारा है। और प्रियंका जी लिखते हैं कि ये भी गाना बहुत ही अच्छा है। और ईश्वरलाल जी लिखते हैं कि मेरा गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। साथ ही साथ यहाँ पे काजल झका जी लिखते हैं कि इनको सभी गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं। गजानंद जी लिखते हैं कि अमन जी आज का भी प्रोग्राम नंबर वन हुआ है, थैंक यू सो मच। और राहुल पासी जी लिखते हैं धन्यवाद अमन सर जी। और इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो यानी कि प्रमोद कुमार जी का है। और प्रमोद कुमार जी क्या सुनना चाहते हैं, ये सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।

0: कहूं के दिल कहूं या दिल रुबा तुझे,
1: क्या बात है,
0: डर है खुदा का वरना मैं तो कहता।

वेलकम बैक और बहुत सारे फीडबैक भी मेरे पास आए हुए हैं। और गजानन जी लिखते हैं कि आदरणीय दोस्त यानी प्रमोद कुमार जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई है, धन्यवाद देते हैं उनको। मीना कुमारी जी लिखते हैं कि ये क्या क्या मैं क्या क्या ये तेरे नाम लिखूं और दिल लिखूं या जान लिखूं, आंसू आंसू चुरा के तेरी यानी प्यारी आंखों से अपनी हर खुशी तेरे नाम लिखूं। वाह वाह क्या बात है। और निशान राय बोले जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना है जी, बिल्कुल। और बिल्कुल राय जी लिखते हैं कि ये बहुत अच्छा गाना लगा, नंबर वन गाना लगा है। और रणवीर सिंह जैसा लाल लिखते हैं कि गाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। मंगेश दसमुख जी लिखते हैं कि ओके। और प्रमोद कुमार लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी गाना प्ले करने के लिए। रवि महाराज जी लिखते हैं कि बस क्या बात है क्या बात है क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना है, सुनने को मिला, मजा आ गया है। राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर पसंद है, धन्यवाद देते हैं। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी बात अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ दो दोस्तों की पसंद, एक यानी पूजा भास्कर जी हैं और उन्हीं के साथ साथ यहाँ पे सुन रहे हैं इस गाने को निशांत राय बोले जी, तो दोनों की दोस्तों की पसंद मैं सुनवा रहा हूँ। इंजॉय कीजिए, तुमसे है कितना प्यार, इंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं और यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि दोनों दोस्तों की डिमांड बहुत ही लाजवाब लगी है। और अशिता बेल लिखते हैं कि ये तुमसे कितना प्यार बहुत अच्छा लगा, ये गाना सुनकर मजा आ गया। निशांत राय बोले लिखते हैं कि मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और पिकू राय लिखते हैं कि ये तो सुपर वन नंबर वन गाना है। जी बिल्कुल। और मीना जी लिखते हैं वाह वाह वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना है। और गजानंद जी लिखते हैं कि यहाँ पे इन पूजा भास्कर जी और निशांत राय बोला जी अब दोनों की पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी है। रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। और साथ ही साथ यानी कि पूजा जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत डिमांड है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये तुमसे कितना प्यार मुझे गाना बहुत ही प्यारा लगा है। और दीपक जी लिखते हैं कि कोई बात नहीं, अगला जो डिमांड है हमारे रवि मौर्य जी का, और ये हर हफ्ते ये गाना वो सुनना चाहते हैं, इसीलिए सुनवा रहा हूँ। रवि मौर्य जी एंजॉय कीजिए। और ये गाना मुझे इतना पसंद है कि मैं क्या बताऊँ। ये बस हमारी सुंदरता की मूर्त यानी कि मेरी यानी परी जी के मतलब समय इन समय स्पेशल जी के लिए डेडिकेट है।

बिल्कुल बहुत सारे फीडबैक भी आए हुए हैं और मैंने मेलोडी निकालने जा रहा हूँ, देखता हूँ इन किन का नाम आता है मेरे पास। और मीना जी लिखते हैं कि छीन लूँ ये निकित तुझसे दुनिया से और ये मेरे बस में नहीं, मगर मेरे दिल ने ये निकित तुझे निकाल दे कोई, ये किसी के बस में नहीं। अच्छा ऐसा भी है क्या। और अपीकु राय जी लिखते हैं कि ये रवि जी के पसंद मुझे बहुत ही पसंद है, ये धन्यवाद देते हैं उनको। निशांत जी बोलते हैं कि मेरा गाना यहाँ भी ये गाना भी बहुत अच्छा लग रहा है। और काजल झक्का जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, थैंक यू सो मच। अच्छा सुनते हैं इस गाने को। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि अमन जी आपकी पसंद का ये भी गाना मुझे अच्छा लगता है।

और मीना इब्राहिम जी लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत डिमांड है ये जी, बिल्कुल। और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि ये भोजपुरी गीत बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और बबीता जी लिखते हैं कि नमस्ते मनसा जी। अच्छा ओके, फिलहाल अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ ये काजल झक्का जी का। काजल झक्का जी सुनना चाहती हैं ये गाना, स्पेशली डेडिकेट

इनका कोई जवाब नहीं मिला है। कोई बात नहीं, मैं अगला मेलोडी निकालूंगा, लेकिन फिलहाल अगला जो डिमांड में प्ले कर रहा हूँ वो निकी खान जी का प्ले कर रहा हूँ। निकी खान जी, इंजॉय कीजिए।

0: ओके, फिलहाल फीडबैक शामिल करते हुए अगला कॉल लगाने वाला हूँ यानी प्रियंका जी को। और निशान राय बोले लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहे सुनने को मिल रहा है। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि रेस्पेक्टर रवि मोहरी जी के पसंद मुझे बहुत ही पसंद है, धन्यवाद देते हैं। रवि मोहरी जी क्या कहते हैं, इनकी सुन लेते हैं।
1: बुधवार हो और ये गाना ना बजे मजा नहीं आता, निर्मुहा रिक्शे वाला मजा आ गया था। ये पूरी फिल्म देखी थी इस गाने के कारण मैंने, बहुत ही फिल्म भी बहुत अच्छी है ये, मजा आ गया। और मंडे के दिन किस्मत में लिखी कोई
0: बात हो तुम
1: तकदीर की एक सौगात हो तुम। मंडे के दिन ये गाना ना बजे तो मजा नहीं आता, पूरे प्रोग्राम सुपर हिट चलते सप्ताह भर के, मजा आ गया मंसर जी ये गाना सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सभी दोस्त।
0: और यहाँ पे एनपी कुरा लिखते हैं कि भोजपुरी गाना तो मुझे सुपर सुपर सुपर हिट लगा है। और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि जब दिल के धड़कन में कोई बस जाला हो, गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और शिल्पा पे लिखते हैं कि ये काजल जी का गाना, अच्छा उससे पहले बहुत उनका तो गाना बहुत देर हो गया, काजल झका जी का सुन लेते हैं फीडबैक।
2: थैंक यू अमन जी गाना बजा देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको और सभी दोस्तों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, इतना अच्छे अच्छे गाने फरमाइश किए सभी दोस्तों का, गाना बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम बहुत अच्छा चला। मैं काजू सीतामढ़ी से।
0: ओके जी, धन्यवाद देते हैं आपका। राधे कृष्ण गोपी देते हैं भोजपुरी गाना तो दिल खुश कर दिया सुनकर। और रवि लोधी जी जुड़ चुके हैं, ये मध्य प्रदेश से हैं और लिखते हैं कि रवि ऐसा नहीं है सर जी, देखिए अगर आप इन्हें सॉन्ग रिक्वेस्ट में गाना, मैंने कल भी गाना आपका प्ले किया था बिल्कुल, शायद आप नहीं सुन पाए होंगे, तो हो सकता है कि आप इन्हें पॉडकास्ट में सुन सकते हैं, मैंने आपको गाने को जरूर प्ले किया था। लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम तो लाजवाब है, थैंक यू सो मच। गजानंद जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। और ओके, और यहाँ पर लिखती हैं निक्की खान जी के, थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। राहुल पासी जी, मैंने आपको कॉल किया था लेकिन आपने उठाया नहीं, शायद आपने ऐप अपडेट नहीं किया इसलिए आपको मेरा इन्हें कॉल नहीं पहुंचा होगा, तो हो सकता है ऐप अपडेट कर लीजिए, क्योंकि आज आप यहाँ पे इन विनर बने थे लेकिन अब नंबर किसी और के हाथ में आ गया है। ओके, और तो फिलहाल अगला कॉल लगाता हूँ मैं इन प्रियंका जी को।

एक कॉल तो जा रही है लेकिन पता नहीं रिसीव हो। शायद इन्होंने भी ऐप अपडेट नहीं किया है। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, अब मैं कॉल लगाने वाला नहीं हूँ। चलिए फिलहाल अगला गाना मैं प्ले करता हूँ, और ये हमारे दीपक कुमार गायकवाड़ जी की पसंद है।

वेलकम बैक, मेरे पास फीडबैक तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं फीडबैक शामिल न करते हुए सीधे यानी मीना इब्राहिम जी का गाना प्ले करता हूँ। और मीना इब्राहिम जी, एंजॉय कीजिए इस गाने को। और मैं जल्दी अब यहाँ पे

0: और बहुत सारे फीडबैक है। आखिरी गाना मैं प्ले करने वाला हूँ और यहाँ पे राहुल पासी जी लिखेंगे, आपका फोन तो अभी आया था मेरे पास मगर आपकी वॉइस नहीं है। ऐसा नहीं है, आप फोन अगर वहाँ पर रिसीव करते हैं तो आवाज़ जरूर आएगी, क्योंकि इससे पहले मैं यहाँ पे टेस्ट कर चुका हूँ। आप में प्रॉब्लम हो सकता है कि आपने परमिशन ना दिया हो, यानी परमिशन देना पड़ता है, अलाउ करना पड़ता है, जो भी आता है उसको अलाउ कर दीजिएगा तो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। और यानी कि प्रियंका जी लिखते हैं कि मैंने भी अपडेट किया तो उसको अलाउ करना पड़ता है, जब भी कॉल जाएगा अलाउ कर लीजिएगा। ओके, फीडबैक।
1: अमन सर जी, मेरा गाना बजाया आपने, दिल खुश हो गया, बहुत मज़ा आया है, और अब गुड नाइट, सबा खैर, अलविदा, कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।
0: बिल्कुल, हम कल फिर मिलने वाले हैं। और रवि लोधी जी लिखते हैं कि आपने मेरा गाना कल प्ले किया था, मैं कल सुन नहीं पाया जी, आज सुन सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एमडी फैज जी लिखते हैं कि नहीं, आज के लिए माफ़ी चाहूँगा, अब मैं नाम लेता हूँ। और यहाँ पे अभी जुड़ गई हैं, यहाँ पे रिया खान जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी, अब ज्यादा समय आप आ रही हैं, बताइए। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। अमीना जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा भी गाना प्ले करने के लिए। और मंगेश दशमुख जी लिखते हैं सुपर सॉन्ग के लिए धन्यवाद देते हैं आपको। और पिकू राय जी लिखते हैं कि ये तो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, इसी बात पर अगला जो आखिरी डिमांड में यानी कि प्ले करने वाला हूँ, और ये है हमारे मंगेश दशमुख जी का। और जिन दोस्तों का गाना छूट रहा है, जरा उनका मैं नाम ले लेता हूँ। हमारे ये विष्णु चंद्र जी हैं, उनका छूट रहा है, और अशोक इंदपाल जी का छूट रहा है। ओके, और एमडी फैज आलम जी का छूट रहा है, सॉरी, और इस्माइल खान जी का भी छूट रहा है, और सुनील कुमार बांका बिहार जी का छूट रहा है, और धर्मेंद्र मोहर भारती जी का छूट रहा है, और ये हमारे ये राधा कृष्ण गोप जी का भी छूट रहा है, सुभाष सिंह तिवारी जी का छूट रहा है, और किशन पाल शाक्य जी का छूट रहा है, साथ ही साथ हमारे सैयद यूनुस जी का भी छूट रहा है, आज इन्होंने अकेला भेज दिया है, और विष्णु चंद्र जी, अच्छा इनका तो नाम मैंने ले लिया था ऑलरेडी, और दिनेश कुमार राय जी का भी छूट रहा है, और एमडी जलील जी का भी छूट रहा है, हुकुम चंद जांगर जी का भी छूट रहा है, आई एम सॉरी, आप दत्ताकरण जी का भी छूट रहा है, और सर्वजीत यानी कि आपका सर्वजीत जी, आपका भी छूट रहा है, आप सभी से, क्योंकि मैं एक घंटा लेट से आया हूँ ना, अगर एक घंटा मैं पहले आता तो हो सकता कि आप सबकी डिमांड जरूर मैं पूरी कर लेता। फिलहाल जाते जाते ये गाना मैं प्ले करके जा रहा हूँ, मंगेश देशमुख जी का, और इसी गाने के साथ मुझे, चलिए मैं थोड़ा सा हूँ, और उसके बाद से आप सबसे लेता हूँ विदा।

0: बरसों बाद ऊंट में निकली हूं। ऐसा लगता है कि वो किसी औषधि की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनार जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: आ आ
1: जा जा घर तू जा जा
0: अरे आ आ इधर तू आ आ
1: जा जा।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: हाँ तो नैनों में
1: बिंदिया है,
0: माथे पे
1: बिंदिया है,
0: तो बालों में
1: गजरा है,
0: आँखों में
1: गजरा है।
0: ओहो,

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.